0: ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ସହଜ ପଥ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା, ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश

0: में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु आज सकाळर भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना वंदिता राय वंदनार प्रथम कंठ शिल्पी कंठरे भगवान नायक वर्मा रचना शिल्पी वंदिता राय

0: न्यासम् अपि करिष्यति। आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री कर्णाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक सञ्चारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी बारिपदा आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट प्रचारित होम ब्यांड 102.9 मेगाहर्ट्ज जुगे समय सकाळ 7:00 आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना सांताली अखला प्रचार कर सकाळ 7:25 आज एथिरे रही नाटक सगाए रचना एवं प्रयोजना परिमल हेम्ब्रम सुगम संगीत शुणे सकाळ 7:55 गीतांजलि सकाळ 8:15 सकाळ 9:00 एवं पूर्वाह्न 10:05 कार्यक्रम रिले करिब आकाशवाणी विविध भारती प्रसारण सेवा दिल्लीरो शिल्पी हाड़ीराम महंत एवं साथीक परिवेशित झुमर प्रचार करिब दिन 12:00 दिन 1:20 नारी महल रिले करिब आकाशवाणी कटक केन्द्ररो अपराह 2:45 संध्या 6:00 जाए कार्यक्रम रिले करिब आकाशवाणी विविध भारती प्रसारण सेवा दिल्लीरो संध्या 6:00 प्रचार करिब केतोटी भक्ति गीत।

0: ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟ, ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା, ସମୟ ସକାଳ 8ଟା, ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ରେଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाज

0: और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और

0: सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
2: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बारीपदा समय सकाल 8:15 आरंभ करुछ आजर गीतांजलि। समग्र पृथ्वी पृष्ठर जीवजंतु गछलता जैव बिवर्तनर गोटे गोटे सोपान, मनीषवासी थर बात पड़ता किपरि सामग्रिक भाव देखा गले समस्त मनुष्य शारीरिक गठन प्राय एकपरि, मात्र से भितर मनर भिन्नता परिलक्षित हुए, देखि हुए ना, बुझि हुए, अनुभव भी करि हुए। यह अस्पृश्य एवं अदृश्य, से अदृश्य शक्ति द्वारा ही से परिचालित होता है। मन ही तार समस्त कार्यपंथा को नियंत्रण कराए।

0: हाँ भाई क्या रे चल लो हो
1: खोरा पानी पवन सब समाधान करते हो
0: ओह माने कथा टिके फिटे के कह
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर वीडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर वीडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची हो एते सुविधा
1: जानी नो की हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अग्रवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनी कुणिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहउचो
1: चलो
3: सकाळरु संज जाय मनुष्यर समस्त कार्य आउ कार्य करिवार शैली एसबु मनतर ही नियंत्रित होइथाय आउ से कार्य काहाकु सम्मानर अधिकारी करे तो काहाकु पुणे निंदार अळिया गदारे पोति पकाए सुकर्म आउ कुकर्म एसबु पछरे मनर शक्ति निहित थाय इंद्रियमानंकु अदृश्यरे परिचालना करे मन केतेबेळे इंद्रियमानंकु कुकर्म करिवाकु प्रोत्साहन दिए तो केतेबेळे सुकर्म करिवार मार्ग खोलि दिए मनकु कबलित करिवार अर्थ इंद्रियमानंकर कार्यकु नियंत्रण करि इंद्रियजित हेबा।

0: हाँ आराम से संभाल के। हाँ
1: देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है।
2: कोई तो मदद करता होगा।
0: हाँ मेरा बैंक।
3: बैंक? वो कैसे?
0: बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है।
3: फिर तो रोज बैंक जाते होगे।
0: बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं।
4: खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे।
5: RBI कहता है जानकार किसान समृद्ध किसान।
6: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
7: କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରେ ମନ। ମନର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦକର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ଆଗେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠେ ବିବେକ, ବାରଣ କରେ ମନ୍ଦକର୍ମ କରିବାକୁ। ମନ ଆଉ ବିବେକର ବଳ କଷାକଷି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ବିଜୟ ହୁଏ କର୍ମ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: फिल्म का नाम है वीर जारा।

0: चित्रलोक। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग।

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब नहीं आए थे तुम, अभी आपने ये गाना सुना, देव फिल्म का ये गाना था। आज अली सरदार जाफरी की याद का दिन है और ठीक इसी तरह की एक नज्म है उनकी, जब नहीं आए थे तुम, ये गीत देव फिल्म में निदा फाजली ने लिखा था। और अली सरदार जाफरी लिखते हैं, तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए, तुम नहीं आए थे जब, तभी तो तुम आए थे।

सरदार जाफरी की याद को हमारा नमन। और चित्रलोक का अगला गाना ए आर रहमान, फिल्म हाईवे।

एआर रहमान की आवाज थी हाईवे फिल्म का ये गाना था। और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की जिसे बचपन में महजबी बानो कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महजबी बानू। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महजबी। इसके अलावा बाकी दो बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था, इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

इसके बाद बीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें।

मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद।

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
2: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या?
2: पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी? धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो
2: रोज ही तो जाते हो वहां, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
2: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
2: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? गा सकोगी मेरे?

रही थीं असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थीं। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थीं। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 3 नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

और फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही

ठीक है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मित अडे और हर्षिंग ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसी की नहीं।
1: बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त।

मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट,

जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुढ़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा।

बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को सीता।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा

दुपट्टा डाल लिया। आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले, और मैं कैसी लग रही हूँ? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे, न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंदी की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज़ तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
0: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूँ और एक चीज़ और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे।
0: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहाँ रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहाँ से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
0: जी जी,
1: मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने।
0: हाँ,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
1: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं
0: जी,
1: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था
0: जी,
1: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
0: वाह,
1: एक दिन पकड़े गए।
0: अरे बाप,
1: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना ये कल से नहीं कर पाएंगे
0: जी।
1: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि आज जब पद्मश्री

0: या जिंदगी में हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे,
1: जी
0: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं।
1: जी बहुत प्यारी बात है। इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना,
1: जी
0: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाता था।
1: ओ
0: मतलब आप समझिए कि लोग, अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड,
1: बिल्कुल
0: 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कॉमेंट्री करते थे और उनकी शैली में, जॉन ऑर्लट हो,
1: हाँ,
0: एलन मैगिलरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कॉमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते हैं,
1: और बैरी
0: उनकी,
1: टोन एकदम
0: हाँ,
1: वो
0: उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकाल कर मैं
1: जी
0: वैसे ही कॉमेंट्री करता था। लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये एक वहां से शौक हुआ। और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा,
1: जी
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज़्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमज़ोर है, इसको हमारी मदद की ज़रूरत है।
1: ओके
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज़्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूँ, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर,
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई। वो
1: हाँ
0: ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी और
1: बिल्कुल
0: दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था,
1: जी
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता,
1: जी
0: लेकिन वो, उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो
1: वाह,
0: मुझे बंबई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई आए
0: इंदौर
1: आप
0: से
1: लोग?
0: बंबई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहाँ से बंबई, बंबई कहते थे जब, बंबई जाने का, बंबई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं, तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बम्बई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहाँ जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम के
1: जी
0: चक्कर काटते थे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई,
1: जी
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है, और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर
1: जी
0: से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रैला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रैला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप
0: तब
1: रे,
0: देखिए आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है।

0: और ढोल मंजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर, तो
1: वाह
0: मैंने किसी
1: वाह,
0: से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं।
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपने जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह वाह
0: अगर बंद
1: वाह,
0: आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब
1: कितनी
0: इसमें दो
1: सुंदर
0: बातें
1: बात
0: हुई साहब, देखिए
1: जी।
0: यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में,
1: जी जी
0: बम्बई
1: जी
0: के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पिताजी थे कि
1: कितनी अद्भुत
0: चलो
1: बात।
0: बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो
1: वाह
0: जब भी आप बड़े हो जाएं कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया। बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन, तो इस गाने की यहाँ पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी।
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही, जैसे आपने कहा
0: और पढ़ाई
1: कि
0: साथ में चलती
1: पढ़ाई
0: रही।
1: साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था मेरा, हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा,
0: जी
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही, हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: यहां
1: और
0: बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं,
1: हाँ जी,
0: जब
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968 69 70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो, उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: ये जो
0: वाह,
1: मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल। तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
1: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये कमज़ोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि 5ों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीज़ें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है,
0: बहुत सही।
1: तो ये आपको चीज़ों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीज़ें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं, ये
0: वाह
1: गलत बात नहीं करेंगे।

0: तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
1: जी
0: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
1: जी आपके बचपन किशोरी युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सी के नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्म भूषण जो
1: जी
0: अकेले पद्म भूषण क्रिकेट के उस समय पहले वाले पद्म भूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफ़ी जाता था, उनके परिवार से काफ़ी रिश्ता था। और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहाँ मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई अकेले भी काम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य, ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा ये कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज़ मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफ़ी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी अपने बचपन के ज़माने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीज़ों का बताया, ये यहाँ थी, यहाँ अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहाँ हिंदी फिल्में लगती थी, यहाँ मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा
0: नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत, मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था,
1: गजब
0: कुछ बहुत, मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, या तो बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफ़ी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहाँ अब तो रहे नहीं टाकेज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी,
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति है। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से ज़रूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आए तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज़ उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका
1: जी।
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान,
1: हाँ।
0: वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
0: बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी मिलते
1: आप मुझे
0: हैं,
1: शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए, और
1: इनके
0: साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत
1: नहीं,
0: दिलचस्प
1: देखिए
0: है।
1: स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ।

0: दौर में वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता। तो ये तमाम चीज़ों की समझ जब
1: जी
0: आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
1: यस
0: तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें, ऐसा नहीं होता सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा
1: नहीं
0: महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
1: बा
0: आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती है, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए,
1: यस
0: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको
1: बिल्कुल
0: सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात, व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है, विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और
1: यस
0: मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूँ कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती वो बता सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हमसे पहले वो समझते हैं। तो अपनी समझ को बरकरार रखें, लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का। ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग
1: नहीं,
0: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज़ को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूँ जहाँ पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
0: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
1: जी
0: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री ज़रूरी है, और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं पहुंच गया वहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि मैंने
1: आकाशवाणी इंदौर
0: मैं
1: में
0: हाँ मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था, और मैं वहाँ पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूँ और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है,
1: जी
0: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि
1: हो
0: पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच
1: ओ
0: बिल्कुल सही था, उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे।
1: और आप 18
0: बोले,
1: के थे।
0: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया।
1: दिल टूटा।
0: मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा

0: क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी, तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं।
1: ओ
0: तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढ कर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा।
1: हाँ
0: अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं,
1: अरे
0: जॉन
1: गजब।
0: ऑर्लॉट की शैली में बताऊं, एलन मिगलमेरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनस्टन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है।
1: हाँ
0: अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं, लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया।
1: ओ
0: लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं, और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब
1: वाह।
0: उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है, और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ऐसा
1: वाह
0: जब
1: वाह,
0: सोचा ना, तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया।
0: शैली भी बन गई, शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं 4 वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया, और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था, कि ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नज़रों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नज़रों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये
1: सीमा
0: तमाम
1: रेखा,
0: चीज़ें, ये सब तकनीकी चीज़ें हिंदी में कभी थी ही नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं, मेरी पत्नी का नाम रेखा है,
1: अच्छा
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं, लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था, मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं, सीमा रेखा इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के, तो
1: हाँ
0: ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही, बोले
1: अच्छा।
0: रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन
1: क्या बात है, शानदार बात
0: है।
1: है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे
1: जी
0: कि
1: जी किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: हाँ नहीं, जॉन ऑर्लट बोलते थे जैसे
1: जी
0: कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल लैंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर।

0: And Gavaskar forward, defensively, back to the ball, no run.
1: वाह क्या ग्रेन्स और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहाँ गाना लेके आता हूँ, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थीं?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो, कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई, और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं।

0: क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहाँ जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
1: गजब।
0: तो देखिए उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली,
1: उल्टा हुआ था।
0: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई
1: जी।
0: कि आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए लोगों को ये बात पसंद आती है
1: बिल्कुल
0: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो

0: अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
1: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
0: नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ,
1: ब्रेबोर्न
0: स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साई नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
1: जी
0: दोनों दिख रहे हैं, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
1: डेविड अब्राहम,
0: हाँ,
1: जी।
0: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
1: जी,
0: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग,
1: हाँ।
0: कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच कर रहा था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए, तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था। और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
1: जी,
0: है ना, 69 को,
1: हाँ।
0: तो वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफ़ी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
1: जी,
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं, उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला
1: जी,
0: चलता
1: जी।
0: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
1: बिल्कुल,
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
1: जी,
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई,
1: बिल्कुल,
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन तो आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस, तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो,
1: बिल्कुल,
0: ऋषि बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है, तो ये एक बात समझने की है।
1: बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी, और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहाँ पर गाना आएगा।
2: ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़, तेंदुलकर।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: ಎತ್ತವಳ ಜಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರಲ್ಲಿ ಕುರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಪ್ರಸರಣ ಸುಭದಲ್ಲಿರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರಿಪದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗಡಿಯ ಸಮಯ ಬರ್ತಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಪ್ರಚಾರ ಕರುಛು ಝುಮರ್ ಗೀತರ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ହାଡ଼ିରାମ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ. ଝୁମର ଶୁଣିପାରିବେ ଏବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ ପରେ.
1: ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ ହଜବେଣ୍ଡ ଜି,
2: ଇଏ ସୌଦାର 15,000, ପରିବାର 2,000,
1: ଆଉ ଲାଇଟ ବିଲ୍
2: ଏବେ ଜିରୋ ପଇସା କେମିତି ଦେବି?
1: ଓହୋ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଯୋଉ 4,000 ବଞ୍ଚିଲା ସେଥିରେ ସପିଂ କରାଯାଉ।
2: ନିଶ୍ଚୟ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ pmsuryaghar.gov.in।
3: आराम से संभाल के हाँ।
4: देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है।
5: कोई तो मदद करता होगा।
3: हाँ, मेरा बैंक।
6: बैंक? वो कैसे?
3: बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है।
6: फिर तो रोज बैंक जाते होगे।
3: बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं।
7: खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे।
8: RBI कहता है जानकार किसान समृद्ध किसान।
9: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
10: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
11: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरा एते चिंता काहे की जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
10: सतरे भाई?
11: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे। पुणी एथिरे वार्षिक 5,000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
12: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 7 1 8 जोगाजोग करंतु।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का ये दो गाना, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था, रोशन का संगीत।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है,
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है,
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चुप रहूंगी इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज़ देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा और शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बीन के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सुदबुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। तो श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली ना हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओ, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्म

फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफ़र कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नज़र आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोता और लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनके आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकिज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

0: अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: अच्छा दास बाबू, आपनको घरटा 1970 रे तैयार हितला राइट, हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितिलि एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: प्रचार करुछु नारी महला।

0: सीताराम राजु अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर उद्घाटन सह विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। ह्रास पाइला 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य। आमेरिकार आक्रमण धमक परिप्रेक्षी में प्रति आक्रमण नहीं ईरान चेतावनी। एवं ताइपेई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितार एकक महिला वर्ग फाइनल पहुंचले तन्वी शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सार्वजनीन परीक्षा असाध उपाय निवारण संशोधन बिल 2026 को अनुमोदन करिछन्ति। गत गुरुवार संसद रे एही बिल पारित होइतिला। एही बिल सार्वजनीन परीक्षा असाध उपाय प्रतिरोध अधिनियम 2026 रो संशोधन पई उद्दिष्ट। एही बिल रे केतक गुरुत्वपूर्ण प्रावधान अंतर्भुक्त करा जायछि। 10 वर्ष पर्यंत कारादंड, 10 कोटी पर्यंत जरिमाना एवं दोषी सब्यस्त होइतिबा अपराधीक संपत्ति व्याज्यप्त भली कठोर दंडर व्यवस्था एही बिल रे रहिछि। मामला गुडीकर त्वरित निष्पत्ति सुनिश्चित करबा पई एही आईन प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित अंचल प्रशासन को दैनन्दिन सुनाणी पई स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करिबा बाध्यतामूलक करिछि। थाना रे सूचना पंजीकृत हेबा दिनठारु 2 मास मध्यरे अपराधर तदंत शेष करिबाकु मध्य एथिरे व्यवस्था रहिछि। चार्जशीट दाखल हेबार 3 मास मध्यरे विचार प्रक्रिया शेष हेबा जरूरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आंध्रप्रदेश विजयनगरम जिला अंतर्गत भोगपुरम ग्रीनफील्ड आलुरी सीताराम राजु अंतर्राष्ट्रीय विमान बंदर उद्घाटन करिछन्ति। आंध्रप्रदेश राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एवं उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण कुमार विमान बंदर रे प्रधानमंत्री को स्वागत करिथिले। श्री मोदी यात्री टर्मिनल भवन उद्घाटन करिछन्ति एवं ग्रीनफील्ड विमान बंदर रो निरीक्षण करिछन्ति। से विमान बंदर रो अत्याधुनिक सुविधा गुडीकर समीक्षा करिछन्ति एवं अधिकारी मानंकु तहार डिजाइन, आधुनिक प्रजुक्ति विद्या, मास्टर प्लान तथा विमान बंदर भविष्यत संपर्क रे पच्चारी बुझिछन्ति।
1: एक समय था जब हवाई उड़ाने सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री 13,500 अधिक आदिवासी महिला द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक ढेमसा नृत्य परिवेषण देखिथिले, जहां उत्तर आंध्र जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाउछि। श्री मोदी राज्य में अनेक प्रकल्प शिलान्यास उद्घाटन करिछन्ति। समावेश को संबोधन कर श्री मोदी कहिछन्ति,
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रूपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य प्राय 200 टंका पर्यंत ह्रास पाई। तैल विपणन कंपानीगुड़िक पक्ष ग्रहण कर संशोधित मूल्य संक्रांत यह पदक्षेप आज लागू हो। दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 2,738 टंका होता बेले कोलकाता 2,872 टंका 50 पैसा, मुंबई में 2,691 टंका एवं चेन्नई में 2,906 टंका होती। दर ह्रास जोगु विभिन्न व्यवसाय प्रतिष्ठान सुफल पाइबे बोली तैल कंपानीगुड़िक पक्षरु कुहाजाइछि। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणीरु। पश्चिम एशियारे थिबा इस्राएल प्रमुख भित्तिभूमि क्षेत्र एवं अमेरिकीय शक्ति प्रतिष्ठानगुड़िक उपरे आक्रमण करिबाकु प्रस्तुत थिबा नै ईरान चेतावनी देइछि। जदि ईरान उपरे आक्रमण हुए तेबे एहार जवाब रे से एही पदक्षेप ग्रहण करिबो बोली सतर्क कराइछि। वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी वक्तव्यकु उद्धार करि ईरान सरकारी गणमाध्यम एही सूचना प्रदान करिछि। ईरान सशस्त्र बाहिनी इतिमध्यरे 40 दिन पर्यंत संघर्ष एवं परवर्ती सामरिक पदक्षेप माध्यम

0: आकाशवाणी कटक बर्तमान समय दिन गोटे बजे पचास मिनट हेबाक जाउछि। प्रथमे शुणन्तु ओडिया रे संवाद एवं परे परे प्रथमे इंग्राजी रे एवं परे हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रु।
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती नीना साहू। मुख्य संवाद, सार्वजनीन परीक्षा असाधु उपाय निवारण संशोधन बिल 2026 को अनुमोदन प्रदान कले राष्ट्रपति। आंध्र प्रदेश

नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए

0: 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या दो हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस

0: अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: मौसम विभाग ने गुजरात केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश कर्नाटक झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा तेलंगाना विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 kHz ଯୋଗେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁରୁ

नवनिगार शकील बदायूं मासकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओ, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलर नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया बाबू साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की, ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और GCF स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतला नगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से, कुमार प्रथमेश प्रणाली कड़ा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से, विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है, महेंद्र नागेश पारस जयेश ऋषभ संयम सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ प्रियंका पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमो।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है। अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी।
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था? कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चुबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भारी आंख भड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी निथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ

0: मेरे खेत है, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
1: क्षमा कीजिए
0: जी,
1: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों?
1: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
1: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
1: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
1: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
1: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
1: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
1: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निताली, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें यह साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे। और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
1: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निताली, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं हैं जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
1: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
1: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती हूँ।
0: कुमारी निताली, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
1: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निताली, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
1: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
1: है।
0: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
1: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे, तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निताली, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
1: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
1: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
1: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
1: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
1: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
1: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी निताली, कुमारी निताली, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता, तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
1: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
1: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है?
1: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
1: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा

0: तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ क्यों नहीं, बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं, क्या अधिकार है आपको?
0: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं हूं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
0: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
0: क्या कहा?
2: बाबा बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
0: अब मैं इसे क्या कहूं?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
2: बाबा आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
0: मैं कुछ करूं?
2: हाँ।
0: लेकिन मैं क्या करूं?
2: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
1: खोद लाएं? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
0: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
2: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
0: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
0: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
0: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक किसका था?
0: हाँ, इसका दादा संकी।
1: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
0: अरे तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं तो तैयार मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बहन ठंग के था जनरान लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल को, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
0: अरे तुम मक्का अरे भी,
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा किधर है? मेरी टांग सुन हो गई।
0: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: हाँ हाँ, जा रहा हूँ।
0: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
0: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
0: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
0: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
0: अरे ब्याह का प्रस्ताव। कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: पहले क्यों नहीं बताया?
0: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
0: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या अब उसे मैं बुलाना जाऊं?
2: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
0: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
0: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊं?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
0: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था।

0: कैसे सम्मान किया। कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: निटालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
0: वो कब आएंगे?
1: ते भाई उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
0: आप उन्हें उठा

0: कीजिए।
1: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
2: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है।
0: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
2: वो बगीचा मेरा है।
0: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
2: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
0: जी हाँ, हमसे भूल हो गई। आप कृपया क्षमा करते।
2: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप कोई और बात कीजिए।
2: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
0: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
2: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
0: क्यों?
2: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
2: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
0: डब्बू आपने लिया किससे था?
2: अजी, ये पहले मेरे नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरे नोब इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
0: 125 रूबल?
2: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
0: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
2: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
2: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
2: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
2: तो सुन लीजिए कुमारी निताली, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है, और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
0: जबड़ा छोटा है?
2: जी,
0: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
2: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
0: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
2: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
0: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
2: जी
0: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
2: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
0: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
2: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
0: आप होंगे क्या? आप हैं
2: जी।
0: भला ये भी कोई बात है पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाद मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: आज

0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघाते चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा।
0: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली। आज मेरा दिल फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
0: अगर यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे कनपटी कनपटी कनपटी।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं होऊंगी। हाँ।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं।
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है। पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुठलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था, और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल,
1: अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर फट गया।
0: हां, देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: एक मूर्ख क्या समझे,
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: हाँ, मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। और मेरी जान, कि आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग, मेरी टांग आ गई, मेरा दिल, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म,
0: डॉक्टर,
2: गधा।
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
3: क्या मिताली, मिताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल फिट नहीं रहा। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
3: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: ला दो ना।
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।

0: Look, look, Paddy Pillow, Paddy Pillow.
1: मैं कहाँ हूँ?
0: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हा? अब तुम झट से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
1: हा? क्या?
0: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
1: क्या सच?
0: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा।
0: आइवन
1: जी, ये लो,
0: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
1: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
0: अच्छा?
1: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है
2: जी। मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
0: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
1: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है
1: जी। नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है
1: जी। नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: तुम लोग
1: भी है
0: जी? है। मैं ही यहाँ

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है। अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ

0: जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए बता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखा लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुबा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे हमसे ना छुपाना रे। गोरी चोरी चोरी मेरी नींदें गई मेरा चैन गया, कब जब होश न था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
1: हाँ
0: अब आंखों की मनी तनम को बहुत भाग गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहाँ लाली गई। अब ये जो आता है
1: हाँ
0: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना,
1: हाँ
0: डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, धिंता का धिंता का धिंता का धिंता का धिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
1: बिल्कुल
0: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, कट दोबारा लेते हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे,
1: जी
0: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूं। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है, तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता।
1: नहीं आती है। जी।
0: जी
1: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था? उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था?
0: एक
1: या
0: दिन
1: एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की
0: एक
1: रिकॉर्डिंग
0: दिन
1: में?
0: एक दिन
1: अच्छा।
0: एक दिन एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100 125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 2:30 3 बजे 3 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं।
1: जी
0: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
1: हाँ जी
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए हैं अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, मैं उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था,
1: जी
0: लाइव लाइव ऑर्केस्ट्रा भी, तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर वो ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
1: जी
0: कृपा होती है,
1: जी
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पामेला जी।
0: हाँ प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है,
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो

0: एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते ही यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है। और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है। म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
1: बहुत
0: तानसेन
1: बढ़िया,
0: जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात है। और बहुत शानदार गाना गाया उस
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गा
1: में, जो सैफ अली साहब की आवाज थी
0: सूट हुई, और
1: बिल्कुल सूट हुई।
0: नहीं और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: इस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, बट जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई।
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है
1: बस उस
0: ये।
1: पल का इंतजार होता है,
0: हाँ
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर
1: मतलब वो एक।
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: आहा, अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं,
0: वो
1: किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे, और
0: और आर डी बर्मन साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होके उनके पैर छूने के, बोला नहीं, नहीं, नहीं, सेन साहब के लड़के बहुत मजा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए, अमित नहीं आए, इतने में अमित नहीं जाए। तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो, टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके
0: सकता।
1: बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
0: बहुत सुंदर
1: था
0: गाना।
1: कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था, जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई
1: वाह
0: बुझाए,
1: वाह सुंदर।
0: हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के साथ की मैंने सुरमा भोपाली। माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ आपने
0: गोविंद के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा। वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना, पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा दिसेला दिलिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे। मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे, कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये, क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए, तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह रहे
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते, क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए कुमार सानू

0: उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, अपना
1: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
0: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
1: अरे क्या
0: जोली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पेमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
1: पूर्णिमा के नाम से हैं
0: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोए, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
1: जी,
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं नहीं वो बात नहीं, वो रिस्पेक्ट,
0: उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट,
1: और
0: कि यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
1: और कला के प्रति समर्पण,
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम है,
0: जी।
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है।
1: नहीं,
0: और
1: हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों
1: हाँ,
0: में गिने
1: शिष्यों
0: जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपके संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए
1: हाँ
0: हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज़ याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज़ आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करो ये नसी टीवी धरी, मारा दिलीप सेन जी पधारिया जी। वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती थी, रहती थी।
0: बिल्कुल
1: तो वहां से ये फोक ट्यूने
0: शुरू
1: निकली।
0: हुआ।
1: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं,
0: जी
1: मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही रहता, जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ये प्रयोग किया।
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी।
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमें किया ते गाम ना गोरी राज, अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी चोली के टूटे सब धागे, अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो।
0: कहीं से उठाकर नहीं ली
1: नहीं
0: गई हो,
1: नहीं
0: ताकि वही
1: फोक तो
0: जो
1: आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूनिंग के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नय्यर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
0: जी।
1: जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है। आप
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, ये नहीं आ रहा है ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या

0: जी जा रहे हैं, आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सही
0: तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी। चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना है?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते
1: देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं,
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार

0: आपकी एक पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला।
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की।
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सिंगर के लिए भी ज़रूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक 2 4 5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, या भोपाली, या पहाड़ी, या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4 5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए। जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते क्या आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: हो जाएं।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रवाह वता वितस्थले वीरो विलंब विलंब भूतम भुतंग तुंग मार जटा टवी गल ज्वल प्रवाह वपा वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर की झपेट दिल दुष्ट को दपेट जरा पेट चाकर लान बजे नक चरा तो न तो होत कटाकट की रिसे ने पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह के लकार की लेजू है जे लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे जनी दान तहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनिया रोजन पे जे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंडे दंड न उमन न सुखन न है कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल बेलो ना रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी चंडी पति सो घमंडी कुल खानी दिनी कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है
0: क्या बात।
1: जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में ही रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग परदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं।

0: भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा, तो इससे आप कुछ भी वगैरह बना
1: जी,
0: सकते हैं।
1: अरे अरे
0: तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के।
1: बहुत
0: इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।
1: खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

छाया गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं, और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे। दिल

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए, काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है। बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं। शायद सावन भी कुछ कहता है।

चुनरिया जब थानी प्रकृति करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन सोना उगलती धरा, नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा, चारों ओर छाई मदहोशी सावन की।

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का घुल जाना।

सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे

0: से कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दुनिया बरसा

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम साब, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तमपुर, जिला गंजाम। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणीनकु अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन्तु।
2: फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करन्तु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करन्तु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444-7 को कॉल करन्तु।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कष्ट करि धार कर्ज करि परिवार लगेइथिली ये खलरा लगेइथिली भेंडी लगेइथिली छचिंद्रा लगेइथिली सबु पानी रे बुड़ी जाइछि रे आउ किछि नै गोटिए छेक बाजार को जाइछि बिक्री हबाको
1: ओहो ये जो बरसा अधिक हैला आ ता सहित आमर जमी रे पानी पसि गला सबु पनीपरिया प्रा नष्ट हैलानी
0: हमर चासी को मेरुदंड भांगी गला रे
1: ये दैवी दुर्विपाक उपरे कहारो हाथ अच्छी कहुन अपा
0: सेटा तो सत्य कथा हेले एमिति हे जीव बोली किए जानिथिला कहिलु रे निधि
1: नाही नाही अपा तमे जहां कहउचो ठीक कथा कहउचो ये भी मन दुख करिया कथा किंतु कथा होची चासी भाई टी हमरो सब जानिची आ दैवी दुर्पा को केमिति सम्मुखिन करियबो से विषय रे मध्य जानिची
0: अरे चासी परा हुडीले बरसे एमिति भांगी पडिले हबनी हमकु अंटा सीधा करबा को पडिबो आमे सळखिकि चालिबा से दुख कष्ट जेते पडु पुणी आमे हम काम को आगेई नबा
1: कथा पदे कहिलो अपा जदि एई कथा को आमे समस्ते हेजिबा समस्ते बुझिबा ताहाले जेते दैवी दुर्पा को आसिले मध्य आमे समस्ते ठिया हेई पारिबा आ आम फसल को मध्य सुरक्षा दे पारिबा हेटी अपा ये बैठक करी को आसीच माने मन टिके खुशी लागिबो ओटे बढ़िया पल्ली गीत अछि तमकु सुनौची सुनो
2: पणा को

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब

0: 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई

0: रामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही छह साल से अधिक समय से

0: चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म तू झूठी में मैं कार से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।
1: उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग ले सकल समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन में दंग और तन पतंग मैं संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वनमोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

0: भी नाम जी।
1: और लॉटरी लगी, 1.25 लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आम तौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थीं झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने 2 कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया। कभी

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।